ये का सुताने क्या सो दो क्या इसराती बोलदा मत के जी जानदा मतलू मैं तो नुमा तुलदा मत।